0: from the newsroom to the studio to the thick of political action.
1: You're watching NDTV 24/7.
2: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
1: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
2: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
0: When stories have impact.
3: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
0: Then news has influence. The buck stops.
4: Welcome back. My name is Reet Kaur Sahani, and you're watching NDTV. Well, it's double trouble for former Chief Minister Mamata Banerjee. Amid the rebellion headache, now Mamata Banerjee is facing legal heat. On one front, an FIR has now been registered against her over alleged communal remarks made ahead of the state elections, with complainants even accusing her of promoting communal disharmony through her speech. On the other hand, a separate probe has now been ordered into the alleged Rs. 635 crore advertising scam involving a prominent Kolkata-based ad agency. Now, this is believed to be close to the former chief minister. Authorities are now examining a series of high-value transactions routed through multiple bank accounts. NDTV learns that ED could also step into the probe and, in fact, even probe the money trail.
5: Amra achi bole na. আপনারা সবাই ভালো আছেন আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম মাসে এক সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোটবাঁধে না ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম বারোটা বাজিয়ে
6: বিজিবিএস করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে এরও তদন্ত হবে তদন্ত শুধু নয় মামলা আমরা করব এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ডওভার করব আমরা ছাড়বো না ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি
4: Well, let's bring you more updates coming in at the Sabo. Well, the rebellion in the Trinamool Congress has now reached a decisive stage. The list of rebel member parliaments is finally out. It's a lineup of about 20 rebels, but with number 13 conspicuously missing. Now, they will be meeting the Lok Sabha Speaker on Monday, staking claim to be the real TMC. And tomorrow, Chief Minister Shivendu Adhikari is likely to meet the rebel member parliaments again in New Delhi. Sources say that a big name will join the rebel ranks soon. Who will that be? Will it be someone from the inner circle of Mamata Banerjee? We already know that Kalyan Banerjee has openly criticized Abhishek Banerjee, branding him as arrogant. And now Abhishek Banerjee has broken his silence, saying that Kalyan Banerjee is senior to him and has the right to express his views.
7: से जानना चाहेंगे कि जो लिस्ट आई है जो सिग्नेचर्स हुए वो किस तरीके से हुए क्या कुछ प्रोसेस रहा क्या कुछ सांसदों का कहना है क्या आपत्ति दर्ज कराई गई अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें
8: सब सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया कि हम स्पीकर को पास जाएंगे और अलादा गुट बनाने के लिए टीएमसी के अलादा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर के पास दावा रखेंगे इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया
7: एक अलग गुट बनाएंगे और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट देंगे लोकसभा में और आप तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी फैक्शन के सांसद हैं तमाम जो लोग हैं कल्याण बनर्जी कीर्ति आज़ाद उन लोगों के साथ में बैठना नहीं पसंद करें
8: नहीं एकदम नहीं हम अलग बैठेंगे अलग गुट से हम बैठेंगे इसलिए तो हम स्पीकर का चिट्ठी दे दिया है
7: जी ऐसा क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद ये निर्णय किया गया वेस्ट बंगाल में देखें तो MLAs दूर हो गए लोकसभा में देखें तो राज सारे MPs ने ये फैसला लिया 20 लोग आप बता रहे हैं कि
8: देखिए पहले जो इलेक्शन का बात हमारा जो बंगाल में जो CM है शुभेंदु अधिकारी वो जो काम कर रहा है अभी तक जो काम किया है एवं अगले दिन में जो काम किया है ये हमारा मन में बहुत अच्छा लगा क्योंकि CM अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है वो बहुत ज़्यादा पता है हमारा मन में खूब पसंद हुआ इसलिए बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा और हमको जो डिमांड है उसका पास हम वो डिमांड रखेंगे और ये

0: validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NETV will go from strength to strength. The front.
1: Welcome back. My name is Reet Kaur Sahani, and you're watching NETV. Well, it's double trouble for former Chief Minister Mamata Banerjee. Amid the rebellion headache, now Mamata Banerjee is facing legal heat. On one front, an FIR has now been registered against her over alleged communal remarks made ahead of the state elections, with complainants even accusing her of promoting communal disharmony through her speech. On the other hand, a separate probe has now been ordered into the alleged Rs. 635 crore advertising scam involving a prominent Kolkata-based ad agency. Now, this is believed to be close to the former chief minister. Authorities are now examining a series of high-value transactions routed through multiple bank accounts. NTTV learns that ED could also step into the probe and, in fact, even probe the money trail.
2: Amra achi bole na. আপনারা সবাই ভালো আছেন আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে এক সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম বারোটা বাজিয়ে
3: বিজিবিএস করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে এরও তদন্ত হবে তদন্ত শুধু নয় মামলা আমরা করব এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকে হ্যান্ড ওভার করবো আমরা ছাড়ব না ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি
1: Well, let's bring you more updates coming in at the Sabo. Well, the rebellion in the Trinamool Congress has now reached a decisive stage. The list of rebel member parliaments is finally out. It's a lineup of about 20 rebels, but with number 13 conspicuously missing. Now, they will be meeting the Lok Sabha Speaker on Monday, staking claim to be the real TMC. And tomorrow, Chief Minister Shivendu Adhikari is likely to meet the rebel member parliaments again in New Delhi. Sources say that a big name will join the rebel ranks soon. Who will that be? Will it be someone from the inner circle of Mamata Banerjee? We already know that Kalyan Banerjee has openly criticized Abhishek Banerjee, branding him as arrogant. And now Abhishek Banerjee has broken his silence, saying that Kalyan Banerjee is senior to him and has the right to express his views.
4: से जानना चाहेंगे कि जो लिस्ट आई है जो सिग्नेचर्स हुए वो किस तरीके से हुए क्या कुछ प्रोसेस रहा क्या कुछ सांसदों का कहना है क्या आपत्ति दर्ज कराई गई अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें
5: सब सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया कि हम स्पीकर के पास जाएंगे और अलादा गुट बनाने के लिए टीएमसी के अलादा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर के पास दावा रखेंगे इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया
4: एक अलग गुट बनाएंगे और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट देंगे लोकसभा में और आप तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी फैक्शन के सांसद हैं तमाम जो लोग हैं कल्याण बनर्जी कीर्ति आज़ाद उन लोगों के साथ में बैठना नहीं पसंद करें
5: नहीं एकदम नहीं हम अलग बैठेंगे अलग गुट से हम बैठेंगे इसलिए तो हम स्पीकर का चिट्ठी दे दिया है
4: जगदीश जी ऐसा क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद ये निर्णय किया गया वेस्ट बंगाल में देखें तो MLAs दूर हो गए लोकसभा में देखें तो सारे MPs ने ये फैसला लिया 20 लोग आप बता रहे हैं कि
5: देखिए पहले जो इलेक्शन का बात हमारा जो बंगाल में जो CM है शुभेंदु अधिकारी वो जो काम कर रहा है अभी तक जो काम किया है एवं अगले दिन में जो काम किया है ये हमारा मन में बहुत अच्छा लगा क्योंकि CM अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है वो बहुत ज़्यादा पता है हमारा मन में खूब पसंद हुआ इसलिए बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा और हमको जो डिमांड है उसका पास हम वो डिमांड रखेंगे और ये डिमांड पूरी करने के लिए वो शुभेंदु जी ने हमको साथ बैठा है वादा किया है हमारा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा और इलाका के डेवलपमेंट के लिए जो काम है वो करेगा
1: On that note, slipping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us.

0: अगर हमारे केस में न्याय मिल जाता पहले ही तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है और मुझे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ अंतिम निकाल आए।
1: On that note, slipping into a very short break, my colleague Gauri Dwivedi brings you her show, India Sense, on the other side. Stay tuned.

0: जी, आपने जमीनी हालत कैसे बदलते हुए देखा है और आपके हिसाब से ये बदलाव किस वजह से आया है और किस किन लोगों ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया है इस बदलाव को लाने में?
1: जी, पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है बाल विवाह के मामले में। एक तो 10 साल पहले जब हम देखते थे बाल विवाह के रीज़न अलग थे। उस वक्त बड़ी बहन के साथ छोटी बहन की शादी कर दी जाती थी और अदले बदले में भी शादी होती थी, और पिछले दशक में काफ़ी बदलाव आया है। और इसमें जब लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ा, मास ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस जैसे जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और अभी एमडीडी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से हम सारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, हमने मिलके इतने अवेयरनेस प्रोग्राम करे हैं हजारों की संख्या में पर ईयर, और लड़कियों की शिक्षा पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करवाया है, और मिलके हमने जो कैंपेन चलाए स्कूलों में, कॉलेजों में, और हमारा जो विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, उनका ग्राउंड लेवल तक नेटवर्क है। आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो बिल्कुल फील्ड में होती है, तो हमने आंगनवाड़ी से लेके और अपर लेवल तक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, और ना केवल बाल विवाह के बैड इम्पैक्ट्स के बारे में बताया, बल्कि शादी एज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, इसको भी हमने चर्चा का विषय बनाया कि जो शादी जो है वो बच्चों से चलने वाली नहीं है। और ना केवल बच्चों के हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है और बच्चे अर्ली मदरहुड का शिकार भी होते हैं। इसके अलावा हमने कानूनी पहलू पे भी लोगों को जागरूक किया। अकेले रोहतक में देखें तो मैंने 10-12 FIR कराई हैं। एक मामले में हम सजा तक भी पहुँचे जिसमें जो लड़की के हस्बैंड को 10 साल तक की सजा हुई है। तो और अखबारों का हमने बहुत सहारा लिया, मीडिया का बहुत सहारा लिया, तो इससे बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है लोगों में। जब हम गाँव में एक शादी रुकवाने जाते हैं तो वहाँ पूरी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो ये सोच भी रहे होते हैं कि हम अपनी नाबालिग लड़की की शादी करें तो वो थोड़ा डर जाते हैं, और इससे क्या है बाल विवाह में काफ़ी फ़र्क आया।
0: So what's clear from this is, be it the media, be it those working at the grassroots level, be it the parents, children, or those in the powers of corridor, everyone has to play a role in eradicating child marriage. On that note, we're sitting a short break. I'll be back with the panelists in moments from now.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
4: Really?
3: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program.
5: Let's get it.
3: Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
7: Some big breaking news coming in from West Bengal. Let's take you through it. We're learning that the Enforcement Directorate has searched Madan Mitra's residence in Dakineshwar. That's right, a search of Madan Mitra's Dakineshwar flat has now led to the recovery of some cash and documents. Details of
8: Welcome back. Dr. Pandya, we often look at law enforcement and grassroots activism as two separate pillars. But on the ground, sir, a legal ban only works if someone speaks up in time. JRC has been effective in creating collaborations and bringing the ecosystem together. How has the partnership between civil society networks and district administration evolved to catch these cases before a marriage takes place? How are you working together to turn local intelligence into immediate legal prevention?
9: JRC Alliance के through एक best innovation जो मुझे देखने को मिला field में, और जिसके best result भी हम लोग देख पा रहे हैं, वो ये था कि हम लोगों ने multiple activities को on field, on ground देखा। जैसे first हमारा था कि हम लोग community based जो हमारी networks हैं, like committees हैं, Mission Matsalya central government की बहुत पुरानी scheme चल रही है कि हम लोग चाहते हैं VCPC विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बने, ग्राम पंचायत लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बने, और इनके थ्रू चाइल्ड राइट चाइल्ड प्रोटेक्शन को इंश्योर ऑन ग्राउंड किया जाए। लेकिन ये बहुत एक चिंता का विषय है कि वर्ष 2012 से अभी तक उस लेवल पर ही एक्टिव फंक्शनल नहीं हो पाई थी। तो जेआरसी के थ्रू जो मैं एक बेस्ट पार्ट देखता हूँ, इन्होंने 50-50 हम लोगों ने इस पार्टनरशिप में विलेजेस को टारगेट किया कि हम लोग ऐसे प्रोमिनेंट या ऐसे जहाँ हाई रिस्क वाले एरियाज हैं, जोन हैं, वहां के विलेजेस को आइडेंटिफाई करके उन VCPCs को फंक्शनल करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर एनजीओ वहां पर ना भी हैं तो भी ओनरशिप के साथ वो कमिटीज फंक्शनल बने, एक्शन टेकर मोड में आए और वो बाल विवाह को रोकें। तो मुझे खुशी है कि आज मोर देन 500 कमिटीज ऐसी राजस्थान, सदर्न राजस्थान में हम लोग फंक्शनल कर पाए हैं। उनके सरपंच एक्टिव हुए हैं, उनको ट्रेनिंग मिला है, ओरिएंटेशन मिला है, और आज इन सारे सरपंच ने अपनी पंचायतों में अपने एक प्लेज लिया है। बहुत सारे सरपंच ने नारे भी लिखवाए कि आप बाल विवाह की सूचना हमें दें, हम आपको पुरस्कृत करेंगे। मतलब वो रिवॉर्ड दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं अपने ऐसे लोगों को जो उनको सूचना दे रहे हैं। ये जो एक बदलाव रहा, इससे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। अब बात करते हैं प्रशासन की। तो डेफिनेटली प्रशासन की ओर से जो हमारा एक ऑर्डर जो रिलीज हुए, और उसमें बहुत बड़ा योगदान था जीआरसी नेटवर्क के थ्रू हाई कोर्ट में जो PIL दाखिल किया गया कि इतने बाल विवाह की संभावना है, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे डिफरेंट ओकेजन पर हो, तो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस PIL पर गौर किया और इंस्ट्रक्शन जारी किए कि सरपंच और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो CWPO हो, इन सबको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने देखा कि जो चीफ सेक्रेटरी लेवल से ऑन ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट DM तक भी जो ऑर्डर आने चाहिए, उस पर जितना संज्ञान काम होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो डेफिनेटली जीआरसी ने ना केवल ट्रेनिंग्स और इनके माध्यम से लोगों को ओरिएंट किया, बल्कि लीगल कंप्लायंसेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तो आज ये दोनों साथ मिलकर, हमारे एनजीओस भी, सिविल सोसाइटी के साथ साथ गवर्नमेंट स्टेक होल्डर भी, और साथ साथ हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में आकर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लिए प्रयासरत हैं।
8: So I think what Dr. Pandya is trying to say there is also how important communication is at every level when it comes to an issue as serious as child marriage. Karminder ji, aapse bhi puchna chahungi, as CMPO, aap administration ka hissa hai, to aap tamam NGOs aur sansthano ke saath milkar kaise kaam karte hai? We just heard communication itna bada role play karta hai in cheezo mein. कि वो आपको खबर आके दे और फिर आप एक्शन ले, प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे होता है?
10: जी, कानून अकेले अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। और जो हमारी एनजीओज हैं, जिसमें जेआरसी और एमडीडी तो हैं ही, जो बहुत ज़्यादा कैंपेन मोड में काम कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे भारत ज्ञान विज्ञान समिति है, हिम्मत है रोहतक में, हरियाणा में जो महिलाओं के बीच में काम करती हैं, तो वो जो लोग हैं एनजीओज के, वो हर रोज़ पब्लिक के बीच में होते हैं
4: जी।
10: और उनको वो अवेयरनेस का काम करना है, साथ में हम कोलैबोरेशन में ही काम करते हैं। हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम मिलके ही करते हैं, एक जगह पे जाते हैं और वहाँ मिलके विद बैनर्स हम लेते हैं, वहाँ पे अपने पैम्फलेट्स भी बांटते हैं लोगों को। और हरियाणा सरकार ने और महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरे हरियाणा में हर ज़िले में हमारे बड़े बड़े बैनर्स लगवाए हैं, होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिन पे हमारा नंबर डिस्प्ले है, हमारा नाम, नंबर, एड्रेस बाल विवाह के ख़िलाफ़। तो इतने बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर लग गए, स्कूल्स के बाहर लग गए, पुलिस थानों के बाहर इस तरह के होर्डिंग्स लग गए, गाँव में जगह मंदिरों में हमने रिलीजियस प्लेसेस पे ये लगाए और रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हमने मिल के काम किया। तो इसका फ़र्क ये पड़ा कि कहीं शादी हो रही होती है तो लोग रिपोर्ट करते हैं
4: जी।
10: एमडीडी का तो कैडर है ही, जो नीचे हैं लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा बोर्ड पढ़ के भी बहुत लोग इन्फॉर्म करते हैं, कुछ स्कूल टीचर्स हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जब कोई देखता है तो 112 पे या हमारे नंबर पे या जस्ट राइट के नंबर पे, एमडीडी के नंबर पे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिस्प्ले किए हुए हैं अपने अपने ज़िलों में ये, तो हमारे पास सूचनाएं आ जाती हैं, फिर हम मौके पे संबंधित थाने की पुलिस को लेके जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को हम समझाते हैं कि आप शादी करोगे तो उसके ये इम्पैक्ट होंगे, FIR दर्ज होगी, जेल में जाओगे। साथ में हरियाणा सरकार ने 2020 में एक नियम लागू किया था कि जो नाबालिग की शादी है उसको कोई वैलिडिटी नहीं रही है, उसको ना लैंड वॉइड कर दिया है। तो हम उनको बताते हैं कि आप ये शादी करोगे तो इसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई लीगल कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो नहीं मिल सकते हैं, लड़की के लीगल राइट्स हैं। और अगेन मैं इस बात पे फोकस करना चाहूँगी कि मैंने तो खास तौर पे शादी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि शादी चलाने के लिए जितना कमिटमेंट, जितनी मैच्योरिटी चाहिए वो एक बच्चे में नहीं हो सकती, और जब बच्चा शादी के लायक होगा तब तक उसके बच्चे हो चुके होंगे। तो ना तो बच्चे ढंग से बड़े हो पाएंगे, ना वो मदर ढंग से उन बच्चों की देखभाल कर पाएगी, उसके हेल्थ इम्पैक्ट अलग से हैं, लीगल इम्पैक्ट्स अलग से हैं। तो ये सारा मिलके हम लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त लोगों के बीच में कर रहे हैं और हम बिल्कुल ही कैंपेन मोड में ही हम लोग ये काम करते हैं।
8: यू आर वन ऑफ द फुट सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड एंड यू आर डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब। माय लास्ट क्वेश्चन टू इज टू यू मिस्टर रविकांत, एज वी मेंशनड अर्लियर इन द शो, देयर आर स्टिल सम स्टेट्स दैट शो अ राइज इन द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज, दिल्ली, पंजाब, गोवा आर अमंग देम। Can we still say, is India moving towards the tipping point to end child marriage by the year 2030, sir?
11: 100% India will reach the tipping point at this decline, 3% decline, and there will be further decline because of the momentous work which have happened. India will see the end of child marriage. As I said, that this generation will end the scourge of child marriage. We have also to understand that child marriage is sexual exploitation of young girls.
8: Of course.
11: And that is what the Supreme Court of India says, that is what we at JRC say, that this is sexual exploitation of, and it's a very serious crime because of the protection of POCSO law which we have. Apart from that, the Honorable Supreme Court of India in the landmark judgment filed by the JRC partner has said that, has created convergence mechanisms at the district level like ASHA committees, which bring in all the administration, civil society and everyone together. There at that level, we are engaging with district agencies and bringing in that catalytic change which can happen because of people coming together. That sends a very strong message. So increase in prosecutions, strengthening of education system, implementation of the law, bringing the fear of the law among the people, community engagement, girls' education, together. And also, due to this landmark judgment, lot of state governments have launched their state action plan. The government of India has launched its action plan on ending child marriage. With this huge focus by the government and the big momentous work being done by Just Rights Partner at the ground, and this year we are going to engage across the country, not only 450 district, but across the country we are going to run this campaign. We are going to do it very aggressively because we want to end this, we want to reach the tipping point.
8: And you're saying in 4 years from now that tipping point will
11: yes,
8: come.
11: Yes, 100%, we are very sure.
8: All right. Now the NFHS6 shows that structural change is possible. the synchronized efforts of governments, legal institutions, faith leaders, and networks like Just Rights for Children prove that child marriage is not an unchangeable reality. If we maintain this momentum, sustain the pressure, and protect our girls' right to education, a child marriage-free India is well within our reach.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: दिस इज वेयर द फ्यूचर शोज अप फर्स्ट। Conversations with the biggest names in tech

0: We have arrived at Farm to Fuel, an award-winning initiative that is changing how farmers handle agricultural waste. The core challenge of crop residue isn't just processing it. It's collecting thousands of acres of loose straw in a tight 30-day window before the next planting season.
1: Sun is shining on us and so is this gentleman. Abhinder ji, bahut swagat hai aapka NDTV par. Farm to Fuel actually karta kya hai?
2: फार्म टू फ्यूल बेसिकली हम जो जितना भी एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ पेडी स्ट्रॉ हो या गन्ने के बाद जो भी खेत में रेजिड्यू रह गया, शुगर केन ट्रैश है, कॉटन स्टिक्स हैं, तो उसको कलेक्ट करके उसका एज अ फ्यूल उसको यूज़ करते हैं. वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो CBG यूज़ कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है या पैलेट प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, अल्टीमेटली तो उससे एनर्जी निकल रही है.
3: To achieve this, Farm to Fuel relies on heavy-duty German baler machines. A single machine can clear almost 70 acres of agricultural residue

गर्जे, भोरी, गजनी से, इसीलिए जाकर इनको लगता है कि हर वो व्यक्ति जो देश की सेवा करता है उसको ये अब्यूज करते हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है, भले वो संजय राउत हो या कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी के कहने पर 140 करोड़ के देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को गाली इसीलिए बकते हैं क्योंकि इन्होंने परिवारवादी गांधी वाड्रा परिवार को विपक्ष में बैठाया है और देश की जनता ने विपक्ष में बैठा है। आज ये स्पष्ट हो गया कि गांधी वाड्रा परिवार और उनके पूरे अलायंस पार्टनर्स, भले वो संजय राउत हो या कोई और, ये लोकतंत्र से नफरत करते हैं।

0: series of high-value transactions routed through multiple bank accounts. NDTV learns that ED could also step in to probe the money trail. Let's listen in to Mamata Banerjee.
1: আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে, এক সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে।
2: বিজিবিএস করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন। 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে। এরও তদন্ত হবে, তদন্ত শুধু নয়, মামলা আমরা করব এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ডওভার করব। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি।
0: A political team meanwhile carried out a midnight raid at the Kolkata residence of TMC leader Abhishek Banerjee in search of his secretary Sumit Roy. The search operation continued till around 8 a.m. and took place in the presence of both Abhishek Banerjee and the TMC chief Mamata Banerjee. However, Sumit Roy was not found at the residence. According to sources, police have been looking for Roy for several days in connection with a case involving alleged transfers of crores of rupees to his bank account. TMC has denied all allegations against Sumit Roy, calling the police action political vendetta and claiming false information is being leaked to the media. On the other hand, the BJP took a swipe at the TMC, saying those involved in corruption must face investigation and action. Let's listen in to these reactions we are picking up.
3: Corruption kiya to hona hi chahiye na, ye sarkar parivartan hua hai. ये सरकार तो जो करप्टेड लोग हैं, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे, और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, भी तो जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयेश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए। जो भी हो, मतलब कोई दल का सबसे बड़ा उच्च पद में हो और कोई भी पंचायत लेवल काउंसिलर लेवल में हो, क्योंकि जनता के लिए पैसा है, जनता के लिए खर्चा करना चाहिए, लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ, ओनली ये लोग लूटे हैं।
0: मूविंग ऑन टू येट अनदर कंट्रोवर्सी, द कंट्रोवर्शियल over the viral comedy clips is now escalating on multiple fronts. Comedian Pranit More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued an apology saying he takes full responsibility for the controversy. KEM Hospital has questioned student Sejal Pawar and is considering disciplinary action after she submitted a written apology. Meanwhile, social media influencer Himanshu Jagra also faces action after being summoned by the National Commission for Women. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has condemned the remarks as the investigations continue and authorities examine the viral content.
4: आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है, और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिज़र्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया, और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा।
0: Viewers, it's time to slip into a short break, but news and updates continue on NDTV. Keep watching.

0: क्या छूट गया है जिसे वापस पाना है, इसी सवाल का जवाब लेंगे स्टूडियो में मौजूद दो खास मेहमान से, इम्तियाज अली और वेदांग रैना। आप दोनों का NDTV स्टूडियोज में स्वागत है। इम्तियाज, हम फिर मिल रहे हैं लेकिन एक नई फिल्म के साथ। मैं वापस आऊँगा, मैं दो थ्रेड्स हैं जब मैंने फिल्म देखी जो स्क्रीनिंग हुई है, एक थ्रेड लव स्टोरी की है, दूसरा थ्रेड पार्टीशन का है
1: जी।
0: आपको क्यों लगा ये दोनों थ्रेड को आपको इंटरट्वाइन करना है और एक नई फिल्म बनानी है?
1: जब मैं चमकीला की शूटिंग कर रहा था पंजाब में, तो मैं ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी आंखों से पार्टीशन देखा था, और उनकी कहानियों में मैं बहुत इन्वॉल्व हो गया। जा करके दूर दराज इलाकों में भी जा करके उनसे मिलना शुरू किया मैंने, और वो लोग बहुत आसानी से दिल्ली या पंजाब में आपको दिखते हैं। जब उनकी कहानियाँ मैंने सुनी तो उसमें पार्टीशन की बातें ज़रूर थी, उसमें दुख दर्द की भी कुछ बातें थी, बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो हमेशा किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे उनको प्यार हुआ करता था या प्यार अभी भी है। किसी ने मेंशन किया कि मेरी एक गुड़िया छूट गई थी, और जब आज 78 ईयर्स हो गए पार्टीशन को, वो उस गुड़िया को याद कर रही हैं कि वो गुड़िया मेरे साथ नहीं आ सकी, वो ताक पे रखी थी, मेरी छूट गई। कोई याद कर रहा है कि मेरा पेड़ था वहाँ, बड़ा खूबसूरत था। मेरे एक पिताजी के एक दोस्त हैं, उन्होंने रावी के किनारे पर पोइट्री लिखना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि एक लड़की थी जो मेरे बाबूजी के दुकान में आया करती थी, मैं उसे देखने आता था। एक लड़का था जो गली से गुजरता था, मुझे मालूम था वो मेरे लिए आ रहा है। दे वर टॉकिंग अबाउट लव एंड अफेक्शन एंड लॉन्गिंग। अब मुझे लगा कि शायद ये जो एक नैरेटिव है ना, ये आया नहीं है कि ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं ये इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। इनकी जो दिल की मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने उनको अभी तक इतनी दूर तक लाया है। दे हैव बीन एबल टू ओवरकम द डिज़ास्टर ऑफ पार्टीशन बिकॉज ऑफ द लव इन देयर हार्ट्स।

0: these two threads are actually intertwined.
1: Vedang, आपने कहा कि आपका आपकी जो एज ग्रुप है उसका किरदार निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में, आप तो उनके दादाजी बने हैं. तो ये बताइए कि जो लव स्टोरी इम्तियाज कहते हैं, जो पिछड़ जाने की लव स्टोरी, जो छूट जाने की कहानी, वो आज आपके जनरेशन में समझ में आएगी? क्योंकि आज तो ऐप्स का ज़माना है, सिचुएशनशिप का ज़माना है. जैसा कि इम्तियाज़ लगातार अपने इंटरव्यूज़ में भी कह रहे हैं कि वक्त नहीं रहता लोगों को, इतनी जल्दी सब कुछ मिल जाता है, यू डोंट हैव टू परस्यू टू मैनी पीपल लाइक फॉर टू लॉन्ग अ टाइम. तो ये वाली कहानी समझ में आएगी आपके जनरेशन?
2: एक तो ये एक डीपर कॉन्वर्सेशन है जहाँ मुझे लगता है कि हमें हर कहानी से रिलेट एनीवे नहीं करना चाहिए. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिलेट टू एवरी स्टोरी, क्योंकि कोई कोई स्टोरीज आप देखते हो एंड यू एस्पायर ऑल्सो एंड यू वॉन्ट दैट ऑल्सो इन योर लाइफ, जो मैं इस कहानी के लिए फील करता हूँ. जैसे मुझे भी वैसा प्यार चाहिए, और मुझे लगता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और हमारे जनरेशन में ये फीलिंग आई थिंक मोर देन बिफोर होगी, क्योंकि हम ऐप्स के ज़माने में, क्योंकि हम इंस्टाग्राम के ज़माने में, तो हम ऐसी लव स्टोरी को देखेंगे और शायद सोचेंगे कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता. और वो फीलिंग मुझे लगता है सबके अंदर है, क्योंकि अगर आप देखोगे और आप लोगों से बात करोगे, मुझे तो अपने एक्सपीरियंस से यही फील होता है कि लोग चाहते वो हैं. अंदर अंदर पीपल आर डाइंग फॉर यू नो द जनरेशन ऑफ फॉर दैट लव स्टोरी ऑफ जब चिट्ठियाँ लिखते थे और जब आँखों आँखों में ही सब चीज़ें हो जाती थी. So I think we are chasing that somewhere. I feel like that and I can speak for my generation कि हम वो चेज कर रहे हैं.
0: कल भी हमने थिएटर में देखा जो यंगर लोग थे ना वो ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि जैसे कि दिलजीत के जो कैरेक्टर प्ले
1: दिलजीत का कैरेक्टर वही रिप्रेजेंट करता है
0: जो निर्वैर ग्रेवाल है. वो आखिर में वो यही कहता है कि उस ज़माने की मोहब्बत, उस टाइप का प्यार हमें क्यों नहीं मिल सकता, यही तो मैं चाहता हूँ. एक्चुअली उसका दिल वहाँ टूटता है कि यही तो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैं वो 78 ईयर से किसी को अपने दिल में रख करके चल रहे हैं, और मैं यहाँ 7 weeks भी कहीं रुक नहीं पाता हूँ. वाई कांट आई बी लाइक हिम? सो एक्चुअली द स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट दिस जनरेशन सीइंग दैट जनरेशन.
1: इम्तियाज़, आप इस फिल्म को देख कर किस एहसास के साथ आपकी ऑडियंस जो है वो घर लौटे?
0: होपफुली वो कहे कि मैं वापस आऊँगा इस फिल्म को दोबारा देखने, बट थोड़ा सा दिल खुले इंसान का. आई थिंक इस फिल्म में भी अगर इतना हो जाए कि पीपल गेट अटैच टू देयर ओन इमोशन, देन आई थिंक दिस मूवी इज़ अ सक्सेस.
1: वेदांगा, इम्तियाज़ अली की फिल्म है, कोस्टार्स में दिलजीत दोसांझ है, नसीरुद्दीन शाह है, आप गाना भी गाते हैं, जिसको म्यूज़िक डायरेक्ट किया है यार रहमान ने, तो सब तरफ मास्टर्स हैं आपके इर्द गिर्द इस फिल्म में, और आपने आवाज़ भी दी है. दो लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाइए, जब वो चल जाएंगे सिनेमा देखने तो क्या सुनने वाले हैं वेदांग की आवाज़?
2: तो एक गाना है मस्कारा हमारी फिल्म से, जो रहमान सर ने कंपोज किया है और निलंजना ने गाया है, और उसमें मैंने भी दो लाइनें गाई हैं, तो मैं वो दो लाइनें गाऊँगा आपके लिए.

0: Directorate, CPIM General Secretary M.A. Bedi on Saturday slammed Congress leader Rahul Gandhi over his remarks on Pinaray Vijayan at the INDIA block meeting and said that the leader, LOP, the leader of opposition, has urged only to stop being the facilitator for ED and the Modi government. Now, you'd remember that Gandhi earlier has said that he cannot hug the former Kerala Chief Minister Vijayan as he has an ongoing political fight with him. This was a remark that was made when there was hectic political campaigning in the state of Kerala.
1: CPIM has taken up certain issues in the India bloc meeting. The most important point was that during the Kerala election campaign, AICC President Sri Mallikarjun Kharge, leader of the opposition Lok Sabha Sri Rahul Gandhi, and other important national leaders of Congress repeatedly accused that CPIM and the LDF is having a secret deal with Vijayan, which is a preposterous allegation. Similarly, they all raised the issue why Kerala, the then Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, is not arrested by enforcement directive.
0: Well, Prashant, my colleague joining us live from the national capital. Prashant, there is no dearth of schisms within the INDIA bloc. Yet another remark by an ally, by a stakeholder within the INDIA against the Congress party. Give us more perspective, please.
2: Well, it all started on June 8th when India bloc leaders met in New Delhi. You would recall during that meeting, many of the India bloc allies, including CPM and Akhilesh Yadav also, they raised similar complaints that Congress does not sometimes adhere to the coalition dharma. And certain leaders of the Congress party, including Rahul Gandhi, make some comments which does not augur well for the alliance interest. And in the same meeting, M.A. Bedi, the CPM General Secretary, also raised the issue of Congress leaders, including Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi, demanding the arrest of Pinaray Vijayan, the then Kerala Chief Minister, during the Kerala election campaign. And there only Rahul Gandhi said that he cannot hug Pinaray Vijayan. So M.A. Bedi has now retorted back, saying that he does not expect Rahul Gandhi to hug Pinaray Vijayan, but at least he's expecting Rahul Gandhi to take a stand against what he calls the wrong charges against Pinaray Vijayan. Mm. So, the rift within the India bloc, surfaces time and again. And this is just one of the examples, once again, when a key constituent of India bloc targeting Rahul Gandhi.
0: Thank you, Prashant, for putting all of that into perspective and telling us more about what's happening within the allies of the INDIA bloc. Shifting our focus to what's happening within the TMC. And the rebellion within the Trinamool Congress has now reached a decisive stage. As the rebel TMC MPs prepare for their next and almost final strike, there are hectic parleys in the national capital ahead of the rebel camp's meeting with Lok Sabha Speaker on Monday. Two rebel TMC MPs, and once believed as the close aide of Mamata Banerjee, Shatabdi Roy and Sudeep Bandyopadhyay, met Union Minister Bhupinder Yadav at his residence in New Delhi. NDTV has learned from its sources that the rebel MPs will hold a key meeting tomorrow. This will happen here in the national capital. It has also been told that Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will be landing here in Delhi and hold a meeting with the TMC's rebel camp.
3: ये उन लोग को करना है करिए, उन लोग को अभी बीजेपी का सेल्टर में रहना होगा, नहीं तो वो लोग को कुछ नहीं चलेगा, समझा ना? ये फोर्थ मई का बाद सब डेवलपमेंट हुआ, कुछ ना कुछ एक रीजन देके बोल रहे हैं, प्लॉय है सब, लेकिन उन लोग का चीफ मिनिस्टर का साथ रहने का आदत हो गया, चीफ मिनिस्टर छोड़ के नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोला, प्लॉय क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट, जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने नहीं सकता क्या, वो लोग क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट करेगा?
4: सुदीप बनर्जी ने किया है, ये ममता दीदी का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये ये ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ, तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बैनर्जी शुड बी रिमूव्ड, ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया और सुदीप बैनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री।
5: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए, तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है। जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किया है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
6: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
7: बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चलते, बीजेपी की जिस तरीके से जीत के बाद उन्होंने उनमें एक और हौसला बढ़ गया है कि हम एजेंसीज का दुरुपयोग कर डराकर धमकाकर या इंसेंटिवाइज कर लोगों को अपनी तरफ लेंगे, दूसरा ब्लॉक बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सिर्फ एक नंबर का खेल हो चुका है। इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, इट इज अबाउट नंबर्स, कि हमारे पास राज्यसभा में इतने नंबर्स आ जाए, लोकसभा में इतने नंबर्स आ जाए तो हम अपने बिल्स पास कर पाएंगे। अदरवाइज राजनीति का कोई महत्व नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, कोई डेमोक्रेटिक एथिक्स नहीं।
8: बीजेपी अपना सदन के अंदर अपना संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके बिल पास करानी है, और यहाँ के सारे एमपीस गन ये देखते हैं कि अगले बार टीएमसी के साथ रहने से दोबारा चुनाव में जीतना नामुमकिन होगी, इसलिए भला इसमें है कि बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी से ये गारंटी लेने की कोशिश किया जाए कि दोबारा इन लोगों को बीजेपी की पार्टी की तरफ से टिकट देने की निश्चयता प्रदान करे।
9: टीएमसी का जो सांसद अपना पार्टी को छोड़ के वो जो अलग ब्लॉक बना रहा है, वो ब्लॉक का एनडीए को हिस्सा ले रहा है, एनडीए के पास जा रहा है, लेकिन ये लोग आम आदमी को सब गद्दारी कर रहा है और टीएमसी पार्टी को लीडरशिप को साथ भी गद्दारी कर रहा है।
0: My colleague Shreyashi Dey joining us live from Kolkata to give us more perspective. Shreyashi, clearly this is a very difficult time for the TMC, which is fighting for its survival right now. Give us a sense of what are you picking up from the ground.
10: Well, with Trinamool Congress MP Sudhir Bandopadhyay in New Delhi at Bhupendra Yadav's residence with Shatabdi Roy, only signals that him being the 20th MP to join the rebel faction, and Sudhir Bandopadhyay being a very senior parliamentarian, six-time sitting MP from the Trinamool Congress and a founding member of the party, has been there with Mamata Banerjee during the formative days of the Trinamool Congress, known as the face of the Trinamool Congress inside the parliament and a very senior one at that, and has been a long-standing aide with the party supremo. But him now being at Bhupendra Yadav's residence only signals that how strong this rebel gang has become and how the close aides of Mamata Banerjee has dumped her during such a turmoil. Just months within the election results coming here in West Bengal, which upturned the Trinamool Congress regime here in the state of West Bengal. So setback after setback coming in from here in West Bengal, in the Vidhan Sabha, in the Parliament for Mamata Banerjee.
0: Thank you, Shreyashi, for putting all of that into perspective. Of course, these defections and en masse defections from the TMC have put a question on their political survival. Thank you so much for putting that into perspective. And the row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
4: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
5: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
6: Gender parity to be reflected while we choose leadership as well.
7: It's also important that how they are reshaping the industries.
8: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
3: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
13: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
14: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
15: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
16: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
4: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
5: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
6: Gender parity to be reflected while we choose leadership as well.
7: It's also important that how they are reshaping the industries.
8: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
3: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
13: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
14: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
15: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
16: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
17: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया।

0: keep coming back to you for more on the story. Shifting focus now, the rebellion within the Trinamool Congress has now reached a decisive stage. As the rebel TMC MPs prepare for their next and almost final strike, there are hectic parleys in the national capital ahead of the rebel camp's meeting with Lok Sabha Speaker on Monday. Two rebel TMC MPs, once believed as close aide of Mamata Banerjee, Satabdi Roy and Sudeep Bandyopadhyay, met Union Minister Bhupinder Yadav at his residence in New Delhi. NDTV has learned from its sources that the rebel MPs will hold a key meeting tomorrow in the national capital. It's also been suggested that Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will be coming to New Delhi to hold a meeting with TMC's rebel camp.
1: देखिए उन लोग को करना है करिए, उन लोग को अभी बीजेपी का शेल्टर में रहना होगा, नहीं तो वो लोग को कुछ नहीं चलेगा, समझा ना। ये फोर्थ मई का बाद सब डेवलपमेंट हुआ, कुछ ना कुछ एक रीजन देके बोल रहे हैं, प्लॉय ये सब। लेकिन उन लोग का चीफ मिनिस्टर का साथ रहने का आदत हो गया, चीफ मिनिस्टर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो लोग क्या बोला, प्लॉय क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट। जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने नहीं सकता क्या, वो लोग क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट करेगा।
2: सुदीप बनर्जी ने किया है ये, ममता दीदी का साथ होना ही था क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये ये ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे, सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव। ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना, वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री।
3: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना, पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए। तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है। जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं, और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किया है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
4: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से, झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
5: बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चलते, बीजेपी की जिस तरीके से जीत के बाद उन्होंने उनमें एक और हौसला बढ़ गया है कि हम एजेंसीज का दुरुपयोग कर डरा कर धमका कर या इंसेंटिवाइज कर लोगों को अपनी तरफ लेंगे, दूसरा ब्लॉक बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सिर्फ एक नंबर का खेल हो चुका है। इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, इट इज अबाउट नंबर्स, कि हमारे पास राज्यसभा में इतने नंबर्स आ जाए, लोकसभा में इतने नंबर्स आ जाए तो हम अपने बिल्स पास कर पाएंगे। अदरवाइज राजनीति का कोई महत्व नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, कोई डेमोक्रेटिक एथिक्स नहीं।
6: बीजेपी अपना सदन के अंदर अपना संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिल पास करानी है। और यहाँ के सारे एमपीज़ गण ये देखते हैं कि अगले बार टीएमसी के साथ

0: An Indian Air Force AN-32 transport aircraft crashed and caught fire at the Air Force Station in Assam's Jorhat today morning, killing 5 Indian Air Force personnel, including 2 Agniveers. According to initial reports, the AN-32 aircraft went down within the Air Force Station premises while landing, triggering a fire after the crash. Emergency response teams were immediately deployed to the site to control the blaze and assess the situation. The cause of the crash is yet to be ascertained, and details regarding casualties or injuries still remain unclear. The Indian Air Force has confirmed that accident occurred during a training sortie and constituted an inquiry committee to ascertain the cause. Defence Minister Rajnath Singh has expressed grief on the incident. Well, that's the word coming in from the Defence Minister. We also heard a lot of experts pointing concerns about what exactly has happened in that incident and requires some kind of investigation. Moving on, the opposition alliance India Bloc held a meet on the 8th of June in the national capital, which was supposed to be a meet to rejuvenate the alliance against the BJP government. But Rahul Gandhi's speech during the meet has sparked another controversy within the alliance, as CPIM has started questioning Lok Sabha LOP. In the recently shared audio of Rahul Gandhi's speech during the block meet, he's being heard saying that he cannot hug former Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan as there is an ongoing political fight. Pinarayi Vijayan has responded to it and said that hug is the usual norm, but Rahul Gandhi photo of hugging Prime Minister Narendra Modi is all over the internet.
1: We have our fights, but if you're asking me to go and hug the ex-Chief Minister of Kerala, I cannot and I will not, because I have an ongoing political fight with him.
2: ഇപ്പോഴിക്കലെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അധികം ഉണ്ടാകാറില്ല. അപൂർവമായിട്ട് ചില ആളുകളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ഒന്നുകിൽ പരസ്പരം വണങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊടുക്കും. കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല. പക്ഷേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഇന്ന് കണ്ടു. രാഹുൽ ഗാന്ധി മോദിയെ ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കാണുകയുണ്ടായി. മോദിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ആക്ഷേപമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണമാണ്. അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സംസാര രീതി തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി എങ്ങനെ ഇന്ത്യ വേദിയെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
3: Most important point was that during the Kerala election campaign, AICC President Shri Mallikarjun Khadge, leader of the opposition Lok Sabha Shri Rahul Gandhi, and other important national leaders of Congress repeatedly accused that CPIM and the LDF is having a secret deal with BJP, which is a preposterous allegation. Similarly, they all raised the issue why Kerala, the then Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, is not arrested by enforcement director.
0: The rebellion in the Trinamool Congress has now reached a decisive stage as the rebel TMC MPs prepare for their next and almost final move. There are hectic parleys in the national capital ahead of the rebel camps meeting with Lok Sabha Speaker on Monday. Two rebel TMC MPs, once believed as close aide of Mamata Banerjee, Satabdi Roy and Sudeep Bandyopadhyay, met Union Minister Bhupinder Yadav at his residence in New Delhi. NDTV has learned from its sources that rebel MPs will hold a key meet tomorrow in the national capital. It's also been told that Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will be landing in the capital to hold a meeting with the rebel camp.
4: Tinko jo log udhar chala gaya, वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है, उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से. अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है. एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है. उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से, उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है. सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जाएगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है.
5: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है जिसका ये ये ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बैनर्जी शुड बी रिमूव्ड, ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बैनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री।
6: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए। तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है। जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किया है। तो जो हो रहा

0: घोरा।
1: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
2: बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चलते, बीजेपी की जिस तरीके से जीत के बाद उन्होंने उनमें एक और हौसला बढ़ गया है कि हम एजेंसीज का दुरुपयोग कर डराकर धमकाकर या इंसेंटिवाइज कर लोगों को अपनी तरफ लेंगे, दूसरा ब्लॉक बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सिर्फ एक नंबर का खेल हो चुका है। इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, इट इज अबाउट नंबर्स। कि हमारे पास राज्यसभा में इतने नंबर्स आ जाएं, लोकसभा में इतने नंबर्स आ जाएं, तो हम अपने बिल्स पास कर पाएंगे। अदरवाइज राजनीति का कोई महत्व नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, कोई डेमोक्रेटिक एथिक्स नहीं।
3: बीजेपी अपना सदन के अंदर अपना संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिल पास करानी है। और यहाँ के सारे एमपीज गण ये देखते हैं कि अगले बार टीएमसी के साथ रहने से दोबारा चुनाव में जीतना नामुमकिन होगी, इसलिए भला इसमें है कि बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी से ये गारंटी लेने की कोशिश किया जाए कि दोबारा इन लोगों को बीजेपी की पार्टी की तरफ से टिकट देने की निश्चयता प्रदान करे।
4: टीएमसी का जो सांसद अपना पार्टी को छोड़ के जो अलग ब्लॉक बना रहा है, वो ब्लॉक का एनडीए को हिस्सा ले रहा है, एनडीए को पास जा रहा है, लेकिन ये लोग आम आदमी को सब गद्दारी कर रहा है और टीएमसी पार्टी को लीडरशिप को साथ भी गद्दारी कर रहा है।
5: The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as controversy gathers more momentum. Comedian Praneet More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked the backlash. The fallout has also reached the KEM hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology. After she offered that she will give a written apology, there is mounting backlash. Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
6: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट, एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आई नो इट्स माय मिस्टेक।
5: द ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैज कंडेम्ड सेजल पवार्स कमेंट, सेइंग शी हैज सर्टेनली स्टडीड द मेडिकल ओथ बट डिड नॉट फॉलो इट। लिसन इन टू व्हाट दे हैड टू से एंड अदर रिएक्शंस।
7: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं। और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
8: मेरा व्यक्तिगत कहना ये है, इतना ट्रेस बढ़ गया है सबका, वो ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी में जाके हंस लेते, अभी ध्यान देना चाहिए सबने। हंसने के लिए पैसा देना पड़ता है और जाके दिल खुलास हंसना चाहिए करके वो शो होता है। सेजल पवार इन्होंने 4 बार ये गलती की है, हॉस्पिटल को कुछ गलत गलत वर्ड चिंदीगढ़ टॉक्सिन ऐसे वर्ड उन्होंने

0: going to explain everything today. I will speak to the people and the press after a few days.
1: All right.
0: But if you can take it for granted that I was not willing. Put in the present situation of the state of affairs of the Trinamool Congress.
1: You were unhappy with the present affairs, is what you're saying.
0: Yeah, very, very unhappy. I was Pradesh Congress president earlier.
1: Right.
0: My Congress life was 52 years. So, you know that. After that, I joined the Congress. But present situation is not very compatible to work very freely. And the situation is very critical.
1: There are many MPs who highlighted why they resigned. They mentioned about their demands being ignored.
0: I will speak to the people and the place at a time.
2: तीनको जो लोग उधर चला गए वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से. अच्छा दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है. एक सोगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है. उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है. सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जायगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है.
3: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी के साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ. तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव. ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया. और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाय वन गेट वन फ्री.
4: The people who have left defected, they are weeded out. We have a new youth president, Arnab Banerjee, Mahila president, Alifa Ahmed. Kunal Ghosh has been selected president of the North Calcutta. Musharraf Hossain has been made president of the minority cell. And the main thing is this meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
5: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किए है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए. तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है. तो जो हो रहा ठीक हो रहा.
6: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है. हर काम बीजेपी करेगी. और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी. लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी. जो लोग जहाँ से आए हैं वहीं से बाहर होंगे.
7: Slipping into a short break, news and updates continue on the other side.
8: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
9: So many attacks.
8: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
9: It's incredible.
8: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
9: Welcome to Left, Right and Center.
8: Hard facts.
9: War-struck country.
8: Hard questions.
9: In the Ukraine.
8: 30 years of trust.
10: In the Kargil area.
9: No few

0: Ukraine, in France, in Italy.
1: At Srinagar.
0: Fine, it's in France.
2: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom, only on NDTV.
4: The news.
5: Ayush, since when do we do scripts?
4: Fair point.
5: Picture this. The biggest stage. Floodlights.
4: Wow.
5: 4K. The works.
4: Where's the hook?
5: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
4: Where's the hook?
5: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
4: Bro, where's the hook?
5: Cross-platform, digital first, virality.
4: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You gotta be real in a world of reels. You gotta be original in a world where everything seems generated.
5: That's it. That's what we're looking for.
4: The best campaigns.
5: The hottest trends.
4: The smartest brand moves on our new show.
5: But wait, what do we call it?
4: The Hook.
6: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
7: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
8: Hi, Red, check the audio.
9: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneet More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology, stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
10: आप सबने मेरा crowd work का video देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी hate मिल रही है, और मुझे ऐसा लगता है ये hate मैं deserve भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं crowd work कर रहा था, उसने काफी derogatory चीजें बोली, but सब लोग उसपे हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी. मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई. तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है, उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है, उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ. लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा.
9: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
11: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी. And I just wanted to come here and say that I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. मैंने ऐसे कभी intentionally नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. It's very bad to see whatever narrative has been said. And बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोल ली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक.
9: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
12: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है. हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं, और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.
9: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under-19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
13: Before Anvay Dravid entered the spot,

0: क्या छूट गया है जिसे वापस पाना है, इसी सवाल का जवाब लेंगे स्टूडियो में मौजूद दो खास मेहमान से, इम्तियाज अली और वेदांग रैना। आप दोनों का NDTV स्टूडियोज में स्वागत है। इम्तियाज, हम फिर मिल रहे हैं लेकिन एक नई फिल्म के साथ। मैं वापस आऊँगा, मैं दो थ्रेड्स हैं जब मैंने फिल्म देखी जो स्क्रीनिंग हुई है, एक थ्रेड लव स्टोरी की है, दूसरा थ्रेड पार्टीशन का है
1: जी।
0: आपको क्यों लगा ये दोनों थ्रेड को आपको इंटरट्वाइन करना है और एक नई फिल्म बनानी?
1: जब मैं चमकीला की शूटिंग कर रहा था पंजाब में, तो मैं ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी आंखों से पार्टीशन देखा था, और उनकी कहानियों में मैं बहुत इन्वॉल्व हो गया। जा कर के दूर दराज इलाकों में भी जा कर के उनसे मिलना शुरू किया मैंने, और वो लोग बहुत आसानी से दिल्ली या पंजाब में आपको दिखते हैं। जब उनकी कहानियाँ मैंने सुनी तो उसमें पार्टीशन की बातें ज़रूर थीं, उसमें दुख दर्द की भी कुछ बातें थीं, बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो हमेशा किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे उनको प्यार हुआ करता था या प्यार अभी भी है। किसी ने मेंशन किया कि मेरी एक गुड़िया छूट गई थी, और जब आज 78 ईयर्स हो गए पार्टीशन को, वो उस गुड़िया को याद कर रही हैं कि वो गुड़िया मेरे साथ नहीं आ सकी, वो ताक पे रखी थी, मेरी छूट गई। कोई याद कर रहा है कि मेरा पेड़ था वहाँ, बड़ा खूबसूरत था। मेरे एक पिताजी के एक दोस्त हैं, उन्होंने रावी के किनारे पर पोइट्री लिखना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि एक लड़की थी जो मेरे बाबूजी के दुकान में आया करती थी, मैं उसे देखने आता था। एक लड़का था जो गली से गुजरता था, मुझे मालूम था वो मेरे लिए आ रहा है। दे वर टॉकिंग अबाउट लव एंड अफेक्शन एंड लॉन्गिंग। अब मुझे लगा कि शायद ये जो एक नैरेटिव है ना, ये आया नहीं है कि ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं ये इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। इनकी जो दिल की मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने उनको अभी तक इतनी दूर तक लाया है। They have been able to overcome the disaster of partition because of the love in their hearts. These two threads are actually intertwined.
0: Vedang, आपने कहा कि आपकी जो एज ग्रुप है उसका किरदार निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में, आप तो उनके दादाजी बने हैं। तो ये बताइए कि जो लव स्टोरी इम्तियाज कहते हैं, जो पिछड़ जाने की लव स्टोरी, जो छूट जाने की कहानी, वो आज आपके जनरेशन में समझ में आएगी? क्योंकि आज तो ऐप्स का ज़माना है, सिचुएशनशिप का ज़माना है, जैसा कि इम्तियाज लगातार अपने इंटरव्यूज़ में भी कह रहे हैं कि वक्त नहीं रहता लोगों को, इतनी जल्दी सब कुछ मिल जाता है, यू डोंट हैव टू परस्यू टू मैनी पीपल लाइक फॉर टू लॉन्गर टाइम। तो ये वाली कहानी समझ में आएगी आपके जनरेशन?
2: एक तो ये एक डीपर कॉन्वर्सेशन है जहाँ मुझे लगता है कि हमें हर कहानी से रिलेट एनीवे नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिलेट टू एवरी स्टोरी, क्योंकि कोई कोई स्टोरीज आप देखते हो एंड यू एस्पायर ऑल्सो एंड यू वॉन्ट दैट ऑल्सो इन योर लाइफ, जो मैं इस कहानी के लिए फील करता हूँ। जैसे मुझे भी वैसा प्यार चाहिए, और मुझे लगता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और हमारे जनरेशन में ये फीलिंग आई थिंक मोर देन बिफोर होगी, क्योंकि हम ऐप्स के ज़माने में, क्योंकि हम इंस्टाग्राम के ज़माने में, तो हम ऐसी लव स्टोरी को देखेंगे और शायद सोचेंगे कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। और वो फीलिंग मुझे लगता है सबके अंदर है, क्योंकि अगर आप देखोगे और आप लोगों से बात करोगे, मुझे तो अपने एक्सपीरियंस से यही फील होता है कि लोग चाहते वो हैं। अंदर पीपल आर डाइंग फॉर यू नो द जनरेशन ऑफ फॉर दैट लव स्टोरी ऑफ जब चिट्ठियाँ लिखते थे और जब आँखों आँखों में ही सब चीज़ें हो जाती थी। So I think we are chasing that somewhere. I feel like that and I can speak for my generation कि हम वो chase कर रहे हैं।
1: कल भी हमने थिएटर में देखा, जो younger लोग थे ना वो ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि जैसे कि दिलजीत के जो कैरेक्टर प्ले,
0: दिलजीत exactly वही, दिलजीत का कैरेक्टर वही रिप्रेजेंट करता है,
1: वही रिप्रेजेंट करता है जो निर्वैर ग्रेवाल है। वो आखिर में वो यही कहता है कि उस ज़माने की मोहब्बत, उस टाइप का प्यार हमें क्यों नहीं मिल सकता, यही तो मैं चाहता हूँ। एक्चुअली उसका दिल वहाँ टूटता है कि यही तो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैं वो 78 ईयर से किसी को अपने दिल में रख करके चल रहे हैं, और मैं यहाँ 7 वीक्स भी कहीं रुक नहीं पाता हूँ। वाई कांट आई बी लाइक हिम? सो एक्चुअली द स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट दिस जनरेशन सीइंग दैट जनरेशन।
0: इम्तियाज, आप इस फिल्म को देख कर किस एहसास के साथ आपकी ऑडियंस जो है वो घर लौटे?
1: होपफुली वो कहे कि मैं वापस आऊँगा इस फिल्म को दोबारा देखने, बट थोड़ा सा दिल खुले इंसान का. आई थिंक इस फिल्म में भी अगर इतना हो जाए कि पीपल गेट अटैच टू देयर ओन इमोशन, देन आई थिंक दिस मूवी इज अ सक्सेस.
0: विदांगा इम्तियाज़ अली की फिल्म है. को स्टार्स में दिलजीत दोसांझ है, नसरुद्दीन शाह है, आप गाना भी गाते हैं, जिसको म्यूज़िक डायरेक्ट किया है यार रहमान ने. तो सब तरफ मास्टर्स हैं आपके इर्द गिर्द इस फिल्म में, और आपने आवाज़ भी दी है. दो लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाइए, जब वो जाएंगे सिनेमा देखने तो क्या सुनने वाले हैं वेदांग की आवाज़.
2: तो एक गाना है मस्कारा हमारी फिल्म से, जो रहमान सर ने कंपोज़ किया है और निलंजना ने गाया है, और उसमें मैंने भी दो लाइनें गाई हैं. तो मैं वो दो लाइनें गाऊंगा आपके लिए.

0: reached a decisive stage as the rebel TMC MPs prepare for their next and final strike. There are hectic parleys in the national capital ahead of the rebel camp's meeting with Lok Sabha Speaker on Monday. Two rebel TMC MPs, once believed as close aide of Mamata Banerjee, Shatabdi Roy and Sudeep Bandyopadhyay, met Union Minister Bhupendra Yadav at his residence in New Delhi. NDTV has learned from its sources that the rebel MPs will hold a key meeting in the national capital and has also been told that Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will be coming to Delhi to hold a meeting with the TMC's rebel camp.
1: Have you resigned recently? You have sent the resignation letter. We were hearing the news.
2: I sent my resignation to Chairperson Mamata Banerjee of the ITC.
1: Sir, when did you resign?
2: I was asked to accept the resignation immediately.
1: Okay, and when did you resign, sir?
2: Today.
1: What was the reason of resignation, if I could ask you, Mr. Bunia?
2: I'm not going to explain everything today. I will speak to the people and the press after a few days.
1: All right.
2: But you can take it for granted that I was not willing to vote in the present situation of the state of affairs of the Trinamool Congress.
1: You were unhappy with the present affairs, is what you're saying?
2: Yeah, very, very unhappy. I was Pradesh Congress President earlier.
1: Right.
2: My Congress life was 52 years. So, you know that. After that, I joined my Congress. But present situation is not very compatible to work very freely. And the situation is very, very critical.
1: There are many MPs who highlighted why they resigned. They mentioned about their demands being ignored.
2: I will not highlight. I will speak to the people and the press after some time.
3: तीन को जो लोग उधर चला गए वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से. अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है. एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है. उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है. सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जाएगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है.
4: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ. तो ममता जी का ये हम लोग बार बार बोले थे, सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड. ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया. और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री.
5: The people who have left defected, they are weeded out. We have a new youth president, Arnab Banerjee. Mahila President Alifa Ahmed. Kunal Ghosh has been selected President of the North Calcutta. Musharraf Hossain has been made President of the Minority Cell. And the main thing is this meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
6: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है, ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए. तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा.
7: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है. हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से.

0: झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
1: Slipping into a short break, news and updates continue on the other side.

0: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
1: You're watching NDTV 24/7.
2: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
3: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
2: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially.
4: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneet More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology, stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
5: आप सबने मेरा crowd work का video देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी hate मिल रही है, और मुझे ऐसे लगता है ये hate मैं deserve भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं crowd work कर रहा था, उसने काफी derogatory चीजें बोली, but सब लोग उसपे हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी. मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई. तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है, उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. जो भी लीगल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट हो रही है, उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ. लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बनकर दिखाऊंगा.
4: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
6: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट. एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोल ली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माय मिस्टेक.
4: द ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैज कंडेम्ड सेजल पवार्स कमेंट, सेइंग शी हैज सर्टेनली स्टडीड द मेडिकल ओथ बट डिड नॉट फॉलो इट.
7: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है. हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं. और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.
4: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under-19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
8: Before Anvay Dravid entered the spotlight, his elder brother Sumit Dravid had already begun making his mark in cricket. Anvay is a wicketkeeper batter, while Sumit is known as a right-handed batter who can also contribute with medium-pace bowling. Both sons of Rahul Dravid are now following in their father's footsteps. Master blaster Sachin Tendulkar's 26-year-old son Arjun Tendulkar continues to pursue his cricketing journey with Goa in domestic cricket and has also featured in the IPL. A left-arm pacer capable of bowling at speeds above 135 km per hour, Arjun has picked up 52 wickets in 24 first-class matches. Like his father Virendra Sehwag, Aryaveer Sehwag is known for his aggressive batting style. He made headlines 2 years ago when he smashed 297 runs off just 309 balls for Delhi Under-19 against Meghalaya in the Cooch Behar Trophy, announcing himself as one of the promising young batters to watch. Former India cricketer Sanjay Bangar's 23-year-old daughter, Anaya Bangar, formerly known as Aryan Bangar, has continued her association with cricket after undergoing gender transition. A left-handed batter and spin bowler, Anaya remains active in the sport, although Indian cricket currently does not have a widely recognized pathway or policy for transgender cricketers in BCCI-organized competitions.

0: Indian situation is not very compatible to work very freely, and the situation is very, very critical.
1: There are many MPs who highlighted why they resigned. They mentioned about their demands being ignored.
0: I will not highlight. I will speak to the people and the press at the same time.
2: तीन को जो लोग उधर चला गए वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से। अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है, एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है। उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जाएगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है।
3: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी के साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव, ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाय वन गेट वन फ्री।
4: द पीपल हु हैव लेफ्ट डिफेक्टेड दे आर वीडेड आउट। वी हैव अ न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बनर्जी, महिला प्रेसिडेंट अलीफा अहमद, कुणाल घोष हैज बीन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ कलकत्ता, मुशर्रफ हुसैन हैज बीन मेड प्रेसिडेंट ऑफ द माइनॉरिटी सेल, एंड द मेन थिंग इज दिस मीटिंग कंडेम द अट्रोसिटीज ऑन द तृणमूल वर्कर्स।
5: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए। तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है। जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
6: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
7: स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, न्यूज़ एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।

0: एक जायगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है।
1: जो सुधीर बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये ये ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड, ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री।
2: The people who have left, defected, they are weeded out. We have a new youth president, Arnab Banerjee, Mahila president, Alifa Ahmed. Kunal Ghosh has been selected president of the North Calcutta. Musharraf Hossain has been made president of the minority cell. And the main thing is, this meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
3: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए, तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है, जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
4: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी, लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी, जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
5: स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।

0: when others are warming up and raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
0: The show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
2: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneeth More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
3: आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई।

0: जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा।
1: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
2: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक।
1: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
3: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
1: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under-19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
4: Before Anvay Dravid entered the spotlight, his elder brother Sumit Dravid had already begun making his mark in cricket. Anvay is a wicketkeeper batter while Sumit is known as a right-handed batter who can also contribute with medium-pace bowling. Both sons of Rahul Dravid are now following in their father's footsteps. Master blaster Sachin Tendulkar's 26-year-old son Arjun Tendulkar continues to pursue his cricketing journey with Goa in domestic cricket and is also featured in the IPL. A left-arm pacer capable of bowling at speeds above 135 km per hour, Arjun has picked up 52 wickets in 24 first-class matches. Like his father Virendra Sehwag, Aryaveer Sehwag is known for his aggressive batting style. He made headlines 2 years ago when he smashed 297 runs off just 309 balls for Delhi Under-19 against Meghalaya in the Cooch Behar Trophy, announcing himself as one of the promising young batters to watch. Former India cricketer Sanjay Bangar's 23-year-old daughter Anaya Bangar, formerly known as Aryan Bangar, has continued her association with cricket after undergoing gender transition. A left-handed batter and spin bowler, Anaya remains active in the sport, although Indian cricket currently does not have a widely recognized pathway or policy for transgender cricketers in BCCI-organized competitions.

0: held a meeting on the 8th of June in the national capital, which was supposed to be a meet to rejuvenate the alliance against the BJP. But Rahul Gandhi's speech during the meet has sparked another controversy within the alliance. The CPIM has started questioning Lok Sabha LOP. In the recently shared audio of Rahul Gandhi's speech during INDIA block meet, he is being heard saying that he cannot hug former Chief Minister of Kerala, Pinaray Vijayan, as there is an ongoing political fight. Pinaray Vijayan has responded and said that hug is the usual norm, but Rahul Gandhi's photo of hugging Prime Minister Narendra Modi is all over the internet.
1: We have our fights, but if you are asking me to go and hug the ex-Chief Minister of Kerala, I cannot. And I will not, because I have an ongoing political fight with
2: him. I am not going to be able to do this. മോദിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ആക്ഷേപമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണമാണ്. അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സംസാര രീതി തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി എങ്ങനെ ഇന്ത്യ വേദിയെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
3: During the Kerala election campaign, AICC President Sri Mallikarjun Kharge, leader of the opposition Lok Sabha Sri Rahul Gandhi, and other important national leaders of Congress repeatedly accused that CPIM and the LDF is having a secret deal with BJP, which is a preposterous allegation. Similarly, they all raised the issue why Kerala, the then Kerala Chief Minister Pinaray Vijayan, is not arrested by enforcement there.
0: The rebellion in the Trinamool Congress has now reached a decisive stage as the rebel TMC MPs prepare for their next and final strike. There are hectic parleys in the national capital ahead of the rebel camps meeting with Lok Sabha Speaker on Monday. Two rebel TMC MPs, once believed as close aide of Mamata Banerjee, Shatabdi Roy and Sudeep Bandyopadhyay, met Union Minister Bhupendra Yadav at his residence in New Delhi. NDTV has learned from its sources that the rebel MPs will hold a key meeting in the national capital. And has also been told that Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will be coming to Delhi to hold a meeting with the TMC's rebel camp.
4: Have you resigned recently? You have sent the resignation letter. We were hearing the news.
5: I sent my resignation to Chairperson Mamata Banerjee of AICC.
4: Sir, when did you resign?
5: I was asked to accept the resignation immediately.
4: Okay, and when did you resign, sir?
5: Today.
4: What was the reason of resignation, if I could ask you, Mr. Bunia?
5: Look, I'm not going to explain everything today. I will speak to the people and the press after a few days.
4: All right.
5: But you can take it for granted that I was not willing to vote in the present situation of the state of affairs of the Trinamool Congress.
4: You were unhappy with the present affairs, is what you're saying?
5: Yeah, very, very unhappy. I was Pradesh Congress President earlier.
4: Right.
5: My Congress life was 52 years.
4: Mm-hmm.
5: So, you know that. After that, I joined my Congress. But present situation is not very compatible to work very freely. And the situation is very, very critical.
4: There are many MPs who highlighted why they resigned. They mentioned about their demands being ignored.
6: I will not highlight. उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जाएगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है।
7: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी के साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये ये ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड, ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री।
8: द पीपल हु हैव लेफ्ट डिफेक्टेड दे आर वीडेड आउट, वी हैव अ न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बनर्जी, महिला प्रेसिडेंट अलीफा अहमद, कुणाल घोष हैज बीन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ कलकत्ता, मुशर्रफ हुसैन हैज बीन मेड प्रेसिडेंट ऑफ द माइनॉरिटी सेल, एंड द मेन थिंग इज दिस मीटिंग कंडेम्ड द एट्रोसिटीज ऑन द तृणमूल वर्कर्स।
9: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए, तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है। जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
10: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
0: स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।

0: उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव, ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री।
1: द पीपल हु हैव लेफ्ट डिफेक्टेड दे आर वीडेड आउट, वी हैव अ न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बनर्जी, महिला प्रेसिडेंट अलीफा अहमद, कुणाल घोष हैज बीन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ कलकत्ता, मुशर्रफ हुसैन हैज बीन मेड प्रेसिडेंट ऑफ द माइनॉरिटी सेल, एंड द मेन थिंग इज दिस मीटिंग कंडेम्ड द एट्रोसिटीज ऑन द तृणमूल वर्कर्स।
2: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए, तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है। जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
3: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
4: स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा।
1: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
2: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक.
1: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
3: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है. हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.
1: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under-19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
4: Before Anvay Dravid entered the spotlight, his elder brother Sumit Dravid had already begun making his mark in cricket. Anvay is a wicketkeeper batter while Sumit is known as a right-handed batter who can also contribute with medium-pace bowling. Both sons of Rahul Dravid are now following in their father's footsteps. Master blaster Sachin Tendulkar's 26-year-old son Arjun Tendulkar continues to pursue his cricketing journey with Goa in domestic cricket and is also featured in the IPL. A left-arm pacer capable of bowling at speeds above 135 km/h, Arjun has picked up 52 wickets in 24 first-class matches. Like his father Virendra Sehwag, Aryaveer Sehwag is known for his aggressive batting style. He made headlines 2 years ago when he smashed 297 runs off just 309 balls for Delhi Under-19 against Meghalaya in the Cooch Behar Trophy, announcing himself as one of the promising young batters to watch. Former India cricketer Sanjay Bangar's 23-year-old daughter Anaya Bangar, formerly known as Aryan Bangar, has continued her association with cricket after undergoing gender transition. A left-handed batter and spin bowler, Anaya remains active in the sport, although Indian cricket currently does not have a widely recognized pathway or policy for transgender cricketers in BCCI-organized competitions.

0: स्टाइल है, ये तो बार बार बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे, सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड, ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना, वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री।
1: द पीपल हु हैव लेफ्ट डिफेक्टेड, दे आर वीडेड आउट। वी हैव अ न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बनर्जी, महिला प्रेसिडेंट अलीफा अहमद, कुणाल घोष हैज बीन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ कलकत्ता, मुशर्रफ हुसैन हैज बीन मेड प्रेसिडेंट ऑफ द माइनॉरिटी सेल, एंड द मेन थिंग इज दिस मीटिंग कंडेम्ड द एट्रोसिटीज ऑन द तृणमूल वर्कर्स।
2: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए। तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है। जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं, और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
3: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहाँ से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
4: Slipping into a short break, news and updates continue on the other side.
5: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
6: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
7: High rate, check the audio.
5: Let's do it.
8: Breaking story, we're jumping straight into it.
5: We've got a picture of the letter.
9: What is in your letter?
5: You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
10: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
11: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
12: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
13: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
14: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
4: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneet More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
15: आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है, और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बनकर दिखाऊंगा।
4: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
16: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग आई एम सो सॉरी अबाउट दैट मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी इट्स वेरी बैड टू see whatever narrative has been said and बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि I respect that like हम उनका बहुत respect करते हैं and I know it's my mistake.
4: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
17: जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है बहुत ही निंदनीय है हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए
4: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under-19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
18: Before Anvay Dravid entered the spotlight, his elder brother Sumit Dravid had already begun making his mark in cricket. Anvay is a wicketkeeper batter while Sumit is known as a right-handed batter who can also contribute with medium-pace bowling. Both sons of Rahul Dravid are now following in their father's footsteps. Master blaster Sachin Tendulkar's 26-year-old son Arjun Tendulkar continues to pursue his cricketing journey with Goa in domestic cricket and has also featured in the IPL. A left-arm pacer capable of bowling at speeds above 135 km per hour, Arjun has picked up 52 wickets in 24 first-class matches. Like his father Virendra Sehwag, Aryaveer Sehwag is known for his aggressive batting style. He made headlines 2 years ago when he smashed 297 runs off just 309 balls for Delhi Under-19 against Meghalaya in the Cooch Behar Trophy, announcing himself as one of the promising young batters to watch. Former India cricketer Sanjay Bangar's 23-year-old daughter Anaya Bangar, formerly known as Aryan Bangar, has continued her association with cricket after undergoing gender transition. A left-handed batter and spin bowler, Anaya remains active in the sport, although Indian cricket currently does not have a widely recognized pathway or policy for transgender cricketers in BCCI-organized competitions.

0: This meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
1: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए. तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा.
2: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है. हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी. लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी. जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे.
3: Slipping into a short break, news and updates continue on the other side.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
6: They say good food speaks for itself, but behind every dish lies a story of talent, a story of precision, a story of obsession, and a story of perfection. We're tracking down the finest culinary minds in the country. We're tracking down the icons and the innovators. The shortlist is ready. The kitchens are battlefields, because there's only one criterion, absolute excellence. The tables are set. Join me, Veer Sanghvi, for the NDTV Food Awards 2026. Thank you.
7: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
8: You're watching NDTV 24/7.
9: The hope is that beyond this election, this.
3: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneet More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
10: आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है, और मुझे ऐसे लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया. और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी. मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई. तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ. लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा.
3: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
11: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी.

0: The North Calcutta. Musharraf Hossain has been made president of the minority cell. And the main thing is this meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
1: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है, ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए. तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं, और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा.
2: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है. हर काम बीजेपी करेगी, और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी. लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी. जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे.
3: स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन द अदर साइड.

0: कौन कितना प्यार करते हैं, जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं, और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए हैं, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
1: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
2: स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight. India Inc's
2: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneeth More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
3: आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसे लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा।
2: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
4: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। I'm so sorry about that. मैंने ऐसे कभी intentionally नहीं सोचा था कि मैं